20 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने

0: 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

गौतम बुद्ध का ये कथन है कि क्रोध को मन में दबाए रखना वैसा ही है जैसे किसी गर्म कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकने की कोशिश करना। इससे हम स्वयं भी जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 215। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं

तबला वादक रविंद्र खासनीस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7 बजे कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जीवन पर और इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे 9:30 पर। 10:00 कार्यक्रम होगा पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11:00 और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा और 2:00 का समय त्रिवेणी कार्यक्रम का। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3:00 सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7:00 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत झलकी एक कुंवारा। लेखक हैं अशोक व्यास, निर्देशक हैं अरविंद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और रात 10:00 का समय है छाया गीत कार्यक्रम का। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 215।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री

राम सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 215। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, अब तक हमने जो चर्चा की है, जो उदाहरण आपने हमें दिए, इसमें विविध तालों पर आधारित गीत जिसमें तबला वाद्य की प्रमुखता थी
2: जी,
1: उस पर बात हुई। और फिल्म संगीत की शुरुआत में तो तबला एक प्रमुख ताल वाद्य था संगति का।
2: हाँ हाँ।
1: लेकिन फिर ढोलक भी एक ताल वाद्य के रूप में आया।
2: हाँ।
1: तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला तब, ताकि उसे ढोलक के साथ आगे बढ़ना था।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है
1: जी, जी,
2: वो ताल कैसे इसमें भी आए है इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए
1: जी।
2: तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का वो आया ढोलक वाद्य के संग में। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफ़ी लोकप्रिय वाद्य है और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता यह है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है
1: जी।
2: ढोलक में शाही नहीं है,
1: शाही नहीं होती,
2: वो खुला बजता है
1: जी।
2: तो ये दोनों का जब मेल होता है तब एक कर्ण मधुर ऐसा संगीत उसमें से उत्पन्न होता है
1: जी। जी।
2: तो हमने जैसे कहा कि कहरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं
1: जी
2: कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं
1: जी। जी।
2: तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो कहरवा है वो कहरवा केवल धागे ना तिना कठिन, धागे ना तिना कठिन, ये मूल ठेका जो है ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है तब ढोलक का अपना एक कहरवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर

0: तो ये कहरवा जो है, कहरवा ढोलक और तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा, तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई।
1: क्या बात है। और मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे?
0: इसमें मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है
1: जी,
0: वो सुनाना चाहूंगा, दिल पुकारे आरे आरे।
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत है।
0: जी जी जी
1: जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाजें हैं, एस डी बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।

0: श्रोताओं, ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीतकार सचिन देव बर्मन, ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखाई दी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के संयोग की, इससे जो नाद बना और ताल संगति हुई।
1: हाँ।
0: लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो ताल वाद्य हैं,
1: हाँ,
0: उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ।
1: हाँ जी।
0: कोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है?
1: बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी
0: जी,
1: क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे है कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी संगत कर रहा है तबला
0: जी,
1: और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं, वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला, दो अंतरों के बीच में
0: जी,
1: तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे परकशन उसमें बज रहे हैं
0: जी जी, ऐसे कई गाने हैं।
1: हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूंगा
0: जी,
1: नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले ले, राम और श्याम फिल्म
0: जी
1: का
0: जी,
1: गीत
0: बहुत सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का बड़ा अच्छा मेल देखने को मिलता है
1: जी।

0: श्रोताओं, फिल्म राम और श्याम का गीत आप सुन रहे थे, रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार नौशाद। और इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हमारी आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रंगीन रातें इस फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, केदार शर्मा के बोल और संगीत है रोशन का।

रंगीन रातें फिल्म का ये गाना आपने सुना, आंखों की बात इसमें कही गई है। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं पटरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मीना कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं राज हट इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना जानेसर अख्तर का लिखा हुआ, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम श्रीमती 420।

बाहें।

0: के कहाँ जाओगे?
1: अच्छा?
0: तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान भी लो पहचान।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है। अभी समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं देवदास फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कैफी आजमी का लिखा और कमल मित्र का संगीत बद्ध किया ये गाना, आशा भोंसले की आवाज, फिल्म का नाम

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं अमर सहगल। इस फिल्म का गाना केएल सहगल की आवाज में, पंडित भूषण का लिखा हुआ गाना, पंकज मलिक का संगीत है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है CID, इस फिल्म का मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें हैं, जानेसर अख्तर के बोल हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में। अब आपको घर फिल्म का गाना सुनवाते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलजार के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आंखों आंखों में इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने एक अंतराल के बाद।
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अब आपको सुनवाएंगे तीन देवियां फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। आज इन गीतों में आप सुन रहे हैं आंखों की या नयन की बातें। आज है विश्व नेत्रदान दिवस, तो अपनी आंखों का ख्याल रखिए और हो सके तो नेत्रदान की तरफ एक कदम बढ़ाइए। यही है हमारा संदेश।

हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धनवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ गाना और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है एफएम बैंड 14.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजे सुनिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार, जिन्हें हम अनु प्रसारित करेंगे कुछ ही पलों में।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में

अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर तरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी

0: 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी

0: ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

इस धरती पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझे, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है एफएम बैंड 14.6 MHz पर। 9 बज चुके हैं। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रलोक सुनिए मुंबई केंद्र से कुछ ही पलों में।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रीबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काक की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

एक पहेली लीला, ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: लक्षण होता है ब्यूरिन ट्यूमर का?
1: देखिए ये कॉमन है, जिस तरीके से आपने बताया कि सर दर्द पीछे के हिस्से में होता है, गर्दन में भी आता है, तो आमतौर से ये एक ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द नहीं होता है ना। तो जैसे कोई टेंशन हेडेक हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है, तो ये वैस्कुलर हेडेक इस तरह के सिम्टम रह सकते हैं। तो आमतौर से 99% जो सर दर्द हैं वो ब्रेन ट्यूमर के नहीं होते हैं।
0: हाँ डॉक्टर, एक श्रोता है फोन पर। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ आपका नाम बताइए और सवाल पूछिए।
2: मैं जितेंद्र गणपतरा टेम्बेकर बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए।
2: नारा से।
0: हाँ आपका सवाल पूछिए।
2: मेरे को 5 साल से ब्रेन लकवा मारा है।

0: मेरे को 5 साल से ब्रेन लकवा मारा है।
1: आपका रेडियो सेट जो आपके पास है उसके उसे आवाज कम कीजिए उसका। हाँ अब आपका सवाल पूछिए।
0: मैं 5 साल से ब्रेन लकवा मारा।
1: हाँ आपका सवाल क्या है?
2: मुझे लगता
0: सर दर्द देता है।
2: देखिए लकवा इनको एक अलग है कि ये पैरालिसिस का पार्ट बता रहे हैं और उसमें सरदर्द क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत सरदर्द रह सकता है। मुझे लगता है कि उन्हें नजदीकी डॉक्टर से एक सलाह लेना चाहिए
1: और उनके जो डॉक्टर हमेशा ट्रीटमेंट
2: करें उनसे बात करनी चाहिए।
1: डॉक्टर बार बार चक्कर आना ये भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है क्या?
2: चक्कर आना देखिए कुछ हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है तो जो जो पार्ट जिस हिस्से को कंट्रोल करता है अगर उस हिस्से में ट्यूमर या अबनॉर्मल ग्रोथ कुछ अगर हो रही है तो वो उस पार्ट को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को सुनाई देने में अचानक से ऐसा लगा कि मुझे एक कान से सुनाई कम दे रहा है तो वो जो नस जो अपने हियरिंग को कंट्रोल करती है अगर उसके पास का ट्यूमर आ रहा है तो ये भी एक वार्निंग साइन है। अच्छा। दिखाई देने वाली जो नसें हैं अगर उसके पास में अपने को ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है या डबल विजन आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो ट्यूमर वहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। उसी तरीके से डिजीनेस चक्कर आना या बैलेंस में दिक्कत होनी चलने में बैलेंस में दिक्कत हो रहा है या आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट के फंक्शन हैं वो उस जगह पे अगर ट्यूमर आ रहा है तो वो उसका सिम्टम हो सकते हैं ये।
1: अच्छा यानी चक्कर आना और सिर में दर्द होना ये आम तौर पर भी दिखाई देते हैं तो ये ब्रेन ट्यूमर के ही लक्षण है ऐसा हम नहीं बोल सकते।
2: ऐसा नहीं बोल सकते ज्यादातर केसेस में हम यही बोलेंगे कि ये नॉर्मल या ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम नहीं है बहुत कम केसेस हैं जो हो सकते हैं।
1: सर एक फोन पर ये है श्रोता। हेलो
3: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
3: जी मुझे कुछ बोलना था। मार्क्स अटेन्यूएटेड सिग्नल इंटेंसिटी नोटेड इन द सुपरकर्नर्ड राइट आईसीए राइट एमसीए विद नॉन विजुलाइजेशन ऑफ सिल्विन एंड कॉर्टिकल ब्रांचेस ऑफ राइट एमसीए विद M2 सेगमेंट लेफ्ट एमसीए एंड रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट एमसीए शोस अटेन्यूएटेड सिग्नल इंटेंसिटी विद माइल्ड इंक्रीज वास्कुलरिटी इन द राइट थैम्पोकुलर रीजन एंड लेफ्ट पोस्टीरियर।
1: आपला नेम का प्रश्न विचारा
3: तो इसकी वजह से थोड़ा देखो स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जो मैंने आपको बोला है ये क्या अफेक्ट हुआ है क्योंकि थोड़ा हेड इंजरी हुआ था भी रिसेंटली।
2: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो स्कैन करवाया है वो ले जाके आप नजदीकी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप वो देखने के बाद ज्यादा बेटर बता सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में।
1: डॉक्टर अभी हम बात कर रहे थे कि चक्कर आना और सिर दर्द तो सामान्यता और ये ब्रेन ट्यूमर का इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं?
2: देखिए चक्कर आना जो है वो जैसे हेडेक का मैंने आपको बताया कि किसी को माइग्रेन का हेडेक है तो वो कभी हफ्ते में महीने में या कभी कभी आता है वो ठीक हो जाता है। पर्टिकुलर उनको पता रहता है कि आधे सर में मुझे दर्द हो रहा है और उनको वो चीज समझ में आ जाती है कि इस तरीके का हेडेक आता है और थोड़ी देर के बाद कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर है वो चला जाता है। लेकिन जो ट्यूमर की वजह से जो हेडेक आते हैं यूजुअली वो परसिस्टेंट हेडेक रहता है कंटिन्यूअसली बना रहता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है साथ में और जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होता है तो अंडर प्रेशर बढ़ता है तो जैसे हम लेटते हैं और जैसे हम सोते हैं मॉर्निंग में तो इसलिए मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग हेडेक है या हम लेटते हैं तो हेडेक बढ़ता है। अच्छा। क्योंकि अंदर ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो साथ में नौशिया वोमिटिंग उल्टी वगैरह होना ये उसके साथ में अगर हो स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में तो ये एक साइन हो सकता है। अच्छा। आप जरूरी नहीं कि ये ट्यूमर का ही हेडेक हो लेकिन ये पैटर्न उससे अलग है और न्यू ऑनसेट है तो हमें उससे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसी तरीके से अगर चक्कर आ रहे हैं तो कभी कभी चक्कर आपको जैसे दिमाग छोटा दिमाग होता है वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी दबाव की वजह से या उसके नस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चक्कर आ सकता है तो वो हमें देखना चाहिए।
1: हाँ, एक श्रोता है फोन पे। हेलो।
4: हाँ मैडम मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ?
4: मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि ट्यूमर कहाँ तो सब जन घबरा दे कि ट्यूमर यानी

0: कैंसर के जैसी है। सर मुझे एक पूछना था कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रेन में एक मैलिग्नेंट और बिनाइन, तो ये बिनाइन भी अगर ट्यूमर रहा तो, क्योंकि हमारे एक नजदीक के फ्रेंड थे उनको बहुत कम एज में 35-30 साल के उम्र में ही उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था
1: जी।
0: और वो टुकरोजी कैंसर हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हुई थी अपने, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं वो जिंदे है कि नहीं, ये नहीं उन्होंने बताया कि वो कैंसरस था या बिनाइन था। तो सर ये दोनों बातों में कितना पेशेंट का यानी सर्वाइवल
1: जी जी देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि जो ट्यूमर होते हैं ब्रेनली ब्रेन में, जो हम मोटा मोटा दो तरीके के बोल सकते हैं, या तो एक तो प्राइमरी ट्यूमर होते हैं जो ब्रेन में ही बनते हैं, और एक होते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर जो बॉडी में कहीं पे ट्यूमर हो और वो ब्रेन में पहुंचा, इसको सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। ये एक तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरी तरीका ये है कि बेनाइन, जैसा इन्होंने कहा, बेनाइन यानी नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर।
2: अच्छा।
1: तो ये दोनों ही प्राइमरी ट्यूमर के प्रकार हैं जो ब्रेन में होते हैं। तो नॉन कैंसरस ट्यूमर जो होते हैं वो अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर लें, जो कि आज की जो सर्जिकल स्किल्स है, जो अपने इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल माइक्रोस्कोप है, नेविगेशन है, तो अगर हम उसको कम्प्लीटली निकाल लें ट्यूमर को, तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं।
2: अच्छा।
1: तो उनका सर्वाइवल इज एज गुड एज जैसे हम नॉर्मल उसका रह सकता है, वैसा बोल सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी अब ऐसा है कि हम आज का जो ट्रीटमेंट ये है कि हम मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन करें।
2: अच्छा।
1: और उसके बाद में अगर वो मैलिग्नेंट आता है यानी कैंसरस है, हाँ। भी तब भी उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके आगे हमारे पास रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, टारगेटेड कीमोथेरेपी, तो ये चीजें हम करके पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो बढ़ा सकते हैं।
2: अच्छा, यानी वो भी ठीक हो सकता है।
1: ठीक हो सकता है, बिल्कुल। तो यही जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो 8 जून अभी गई है, तो इसको हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के मनाया जाता है इसे। तो इसका मकसद ही यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना, जिस तरीके से बाकी ट्यूमर्स होते हैं, हेड एंड नेक ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर्स हैं, तो इसमें कैसा, जिसमें अवेयरनेस जो फैलाई गई है कि लोगों को इसके बारे में पता चले कि ये ट्यूमर है, ऐसा भी हो सकता है, उसके ये सिम्टम्स हैं, और ये हुआ भी तो घबराने की जरूरत नहीं, इसका इलाज है, ये ठीक हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर बेनाइन, उन्होंने पूछा कि बेनाइन अगर ट्यूमर है उसे हम निकाल दें तो उसका सर्वाइवल काफ़ी हद तक नॉर्मल रह सकता है। जी
2: तो डॉक्टर, और क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि अगर हमें ब्रेन ट्यूमर ऐसे लगे?
1: जी जी, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक हेडेक हो सकता है, परसिस्टेंट हेडेक है, साथ में उसके साथ नौशिया वोमिटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप दौरा जो आ जाता है सीजर। अच्छा। तो अगर किसी को न्यू ऑनसेट सीजर यानी उसको पहली बार किसी को एक बार दौरा आया, तो ये एक वार्निंग साइन रह सकता है कि भाई ये इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एडल्ट कोई है, इसको पहली बार ही दौरा आ गया, तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, किसी को दिखाई देने में अगर दिक्कत हो रही है, ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, या डबल विजन आ रहा है उसको, तो ये एक चीज़ रह सकती है। साथ में अगर किसी को सुनाई देने में दिक्कत हो रही है, स्पेशली एक कान में उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ भी एक सिम्टम रह सकता है। दूसरा, बैलेंस करने में, किसी को चलने में बैलेंस में दिक्कत आ रही है, या कोई मूवमेंट या हाथ से काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो दिक्कत आ रही है। किसी को बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कुछ प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या स्पीच में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, या किसी के हाथ पैर में सुनपना या ताकत में कमी आ रही, लकवा जैसे सिम्टम है, तो ये सारी चीज़ें भी इनके सिम्टम रह सकते हैं।
2: इन लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे, एक फ़ोन ले लेते हैं।
3: हेलो
2: हेलो,
3: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: नमस्कार,
3: मी हंसराज हुमने बोलतो आपल्या नागपूर वरून।
1: बोल।
3: माझा प्रश्न असा आहे की जसं म्हणजे अर्धा
2: तुमच्या रेडिओ सेटचा आवाज कमी करा आणि मग प्रश्न विचारा।
3: माझा प्रश्न असा आहे की मी अर्धा सर याने दुखतो, हा ब्रेन ट्यूमरचा म्हणजे प्रकार होऊ शकतो का?
1: ये कॉमन चीज़ है, जिस तरीके से आधे सर में दर्द जो बता रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक किस्म का बोल सकते हैं कि माइग्रेन का दर्द हो सकता है। तो 99% तो चांस ही नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर का रहेगा इस तरीके से। और मैंने बताया कि एक पैटर्न उनको समझ में आता है कि मुझे, मेरा सर दुखता है, आधा सर दुखता है।

0: फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, फिर हफ्ते 10-15 दिन में फिर यह होता है, महीने में। तो ये मोस्टली नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर बहुत कंटिन्यूअसली बना हुआ है तो एक अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिले एक बार।
1: श्रोतो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर। हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय आहे ब्रेन ट्यूमरची लक्षणं आणि उपचार, आणि तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर हुसेन भाटी। श्रोतो कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर 6940067256011 आणि 2529266 आणि एसटीडी कोड आपण जाणताच 0712। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे इस कॉल से पहले कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते, तो आपने बहुत से लक्षण बता दिए थे, और कुछ लक्षण है?
0: एक चीज़ है, जैसे और लक्षणों में हम बात करते हैं तो किसी के, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन का जो हर पार्ट जो है वहाँ से बॉडी का पार्ट कंट्रोल होता है, तो वैसे ही आप अगर किसी को, पेशेंट को देखें जिसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, वो चिड़चिड़ापन आ रहा है, बहुत एजिटेटेड हो गए हैं, या उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, तो जैसे फ्रंटल लोब ब्रेन का जो पार्ट होता है, तो ये भी एक साइन रह सकता है। हम उसको दूसरी तरीके से देखते हैं कि ये क्या हो गया इनको, एडल्ट है या इनको ये साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है। तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि वो साइकेट्रिस्ट या उसके पास जाते हैं और वो दवाइयाँ चलती रहती हैं, और कभी वो स्कैन अगर कराते हैं तो समझ में आता है कि तो ब्रेन ट्यूमर है। तो ये भी एक साइन रह सकता है इस तरीके के चीज़ों में।
1: अच्छा, तो ये लक्षण दिखाई, हाँ, अगर ये लक्षणों के साथ अगर आपके यहाँ मरीज आता है तो आप उसका निदान कैसे करते हैं?
0: देखिए, हम पहले तो पेशेंट का क्लिनिकल पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक डायग्नोसिस क्लिनिकली समझ में आ सकता है, आ जाता है कि ये इस ब्रेन ट्यूमर हो सकता है।
1: डॉक्टर, हम बात करेंगे, एक फोन ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: हाँ नमस्कार,
2: मैं कुमार गौरव इंदुरकर, तालुका चिमूर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से बात कर रहा हूँ मैडम।
1: अच्छा, बोलिए।
2: मेरे पिताजी को कभी कभी सर में दर्द होता है और वो चिड़चिड़ हो जाता है कुछ बात के लिए, तो ये क्या माइग्रेन के लक्षण है, क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताइए मैडम। तो कुछ बोला तो भी चिड़चिड़ करता है और कभी कभी चक्कर भी आता है उसको।
0: तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया इसके लक्षण जो है, तो ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण है वो एक नॉर्मल चीज़ों से भी ओवरलैप करते हैं। तो मुझे जैसे हमने ये चिड़चिड़ करते हैं, हेडेक होता है, तो ये सारी चीज़ें ओल्ड एज में है, तो ये एज रिलेटेड चीज़ें भी रह सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस है, न्यू ऑनसेट है, बढ़ रही हैं, तो इनको ज़रूर अपने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए।
1: और एक फोन श्रोता है फोन पे। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ
3: मुझे मुझे एक सवाल पूछना था।
1: हाँ पूछिए।
3: ये अपना ब्लड प्रेशर का और सर दर्द का क्या रिलेशन है, और आज के चेंजिंग कंडीशन में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज रूटीन वर्क करने के लिए, करने वाले के लिए क्या समझना चाहिए? दूसरा एक उसमें एडिशन ये है कि दोनों मतलब बैक साइड से, नेक के साइड से पेन शुरू होता है, सर दर्द शुरू होता है, और ऐसा धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आगे आके एक आंख और राइट साइड में ऐसा सर दर्द हो रहा है,
0: देखिए ये भी एक कॉमन, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये बहुत ही कॉमन है। तो एक चीज जो, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है जैसे इन्होंने कहा, तो ये उसमें भी हेडेक होता है।
1: अच्छा, हाँ।
0: तो सरदर्द होता है अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ, चक्कर भी उसमें आता है। तो अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या जिनको बीपी है, अगर उनको ये सिम्टम आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना बीपी चेक करें। तो ये बहुत कॉमन है कि आपका अगर बीपी बढ़ता है तो आपको सरदर्द या चक्कर आ सकता है। तो वो अपना बीपी चेक करें। और जिस तरीके से ये बता रहे थे कि सर के पीछे के हिस्से में, गर्दन में जो दर्द होता है, तो ये भी एक तरीके के बीपी बढ़ने से भी हो सकता है, टेंशन स्ट्रेस के रिलेटेड भी ये हेडेक रह सकता है,
1: हो सकता है
0: जी।
1: तो डॉक्टर, ये हम फर्क कैसे समझे कि इससे और ब्रेन ट्यूमर का नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर के पास आने के बाद ही पता चलता है?
0: तो क्लिनिकल वही है कि हम जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं, तो हिस्ट्री जब हम प्रॉपर लेते हैं डिटेल में और उनको एग्जामिन करते हैं, तो फिर हमें काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये ट्यूमर का हेडेक है या नहीं है। तो इस उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कुछ केसेस

0: में सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन करते हैं,
1: अच्छा
0: है ना, तो उसको कंफर्म करने के लिए. तो सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में, तो आप कर सकते हैं. तो प्रॉपर डायग्नोसिस आपका जो सीटी स्कैन और एमआरआई के बाद ही होता है.
1: होता है.
0: जी
1: एक श्रोता है फोन पर. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ, आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न.
2: मी प्रफुल्ल वानखेडे बोलत आहे, मोहगाव फुटीबोरीवरून. हॅलो.
1: हा, आपलं नाव सांगितलंय, प्रश्न विचारा.
2: हा, फुटीबोरी. माझं नाव प्रफुल्ल वानखेडे, फुटीबोरीवरून बोलतो. मॅडम, मला एक सांगा, सकाळी आपण जेव्हा झोपून उठतो मी, तर कधी कधी माझं डोकं दुखतं पंख्याच्या हवेनी, तर आणि मला मग सतत टोपरं घालून झोपायची सवय आहे, तर हे कशाचं लक्षण असू शकतं?
0: देखिए, ये अभी मैंने कहा ओवरलैप करते हैं, तो ये अर्ली मॉर्निंग हेडेक की बात कर रहे हैं कि सुबह उठता है तो परसिस्टेंट है, न्यू ऑनसेट है, हेडेक बना हुआ है, साथ में उसके नौशिया हो रहा है, उल्टियां हो रही है और बढ़ रहा है, ये साइन हो सकता है वार्निंग. ये इसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. वैसे ही कभी नींद नहीं हो पा रही आपकी, है ना, प्रॉपर तरीके से, और हल्का कभी दर्द रहता है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया, तो ये इसको हम नॉर्मल हेडेक बोलेंगे हम. इस तो इसमें इतने चिंता करने की बात नहीं है. जी,
1: लेकिन हमेशा ही सर दर्द हो तो
0: बिल्कुल
1: टेंशन.
0: हाँ जी.
1: एक और श्रोता फोन पे है. हेलो.
3: हेलो. हेलो, नमस्ते सर. मैम, गुड मॉर्निंग सर.
1: गुड मॉर्निंग
3: सर. मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ सर. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, ये जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है, इसमें फैमिली हिस्ट्री का कितना रोल प्ले है, मतलब होता है, मतलब ये मतलब जिसको कहते हैं कोई अनलकी इंसान हो तो उसी को, मतलब ऐसा हो सकता
0: है? तो इसके कोई कारण ब्रेन ट्यूमर के नहीं है, लेकिन जैसे बाकी ट्यूमर्स में एक रिस्क फैक्टर होता है कि आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो किसी के फैमिली में आपके ब्रेन ट्यूमर है या हुआ था, और आपको ये कुछ सिम्टम्स जो हम बात कर रहे हैं कि सरदर्दी आप समझ के चलें कि आपको आ रहा है, तो आपको थोड़ा दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. ये एक रिस्क फैक्टर आप समझ के चलें कि मेरी फैमिली में किसी को अगर हुआ है
1: तो मुझे सावधान
0: तो
1: होना चाहिए,
0: सावधान रहने की जरूरत है. अगर आपको हेडेक भी अगर हो रहा है और वो थोड़ा कंटिन्यूस बना हुआ है या तो उसको आपको बाकी लोगों के हेडेक के मुकाबले में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है. अदरवाइज इसके कोई ऐसे रिस्क ये नहीं है कि इन्हीं वजह से होता है, बट ये एक फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर जरूर है,
1: तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए. और एक श्रोता फोन पे है, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया.
4: हेलो.
1: हेलो.
4: हाँ, नमस्कार. मला विचारायचं होतं, आता जे डिस्कशन होत आहे, तर ते लहान मुलांना होतं का, म्हणजे किती वर्षापासून होतं?
0: बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, और वो ब्रेन ट्यूमर अनफॉर्चुनेटली जो है थोड़े से मैलिग्नेंट या कैंसरस होने की संभावनाएं रहती हैं. तो सिम्टम्स आपको वही मिलेंगे आपको कि पेशेंट बच्चा अगर बता सकता है कि मुझे हेडेक हो रहा है तो वो बताएगा, या फिर उसको वोमिटिंग हो रही है,
1: चक्कर
0: आ रहे हैं, और उसको फिर दिखाई देने में बोल रहा है कि मुझे दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, बैलेंस में प्रॉब्लम है. किसी किसी का जो सर अगर छोटा बच्चा है तो वो ब्रेन में पानी भर जाता है.
1: अच्छा.
0: उसके उस वजह से. तो ये सब चीज़ें बच्चों में भी रह सकती, बच्चों में भी ट्यूमर्स होते हैं और उसका भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं.
1: यानी सेम पैटर्न रहता है बड़ों की और बच्चों की. इसमें
0: दौरा आना एक जो है वो एक चीजें हो सकती है कॉमन इसमें.
1: और एक श्रोता फोन पे है. हेलो.
5: डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा.
1: हाँ, पूछिए.
5: डॉक्टर साहब, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी सर दर्द होता है क्या, और सर में भारीपन लगता है क्या?
0: जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे इन्होंने कहा, तो इसकी वजह से भी जो नीचे का पार्ट जो है ब्रेन, सर का जो जंक्शन है, वहाँ पे काफी लोगों को सर में दर्द होना या चक्कर आना, ये भी एक सिम्टम रह सकता है. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी हम जब पेशेंट्स देखते हैं तो काफी हद तक ये चीजें नजर समझ में आती हैं कि सर दर्द होना या चक्कर आना, ये उसका पार्ट रह सकता है.
1: और एक श्रोता है फोन पे. हेलो.
6: हेलो, नमस्कार.
1: नमस्कार.
6: आहे की फेशियल स्पाझम आणि चेहऱ्याचे लेफ्ट साईड जी असेल ती खाली सरकलेली थोडीशी, जी जेव्हा ई जी केला

0: तेव्हा क्लिपिंग आहे असं सांगितलं. ते क्लिपिंग वेगळं आणि ट्युमर वेगळं असं काही प्रकार आहे का?
1: क्लिपिंग नहीं, देखिए आप ये जो फेशियल पाल्सी के बारे में आप बात करें या फेशियल स्पाज़म, तो वो एक अलग चीज़ है. यूजुअली जो ट्यूमर की वजह से जो दौरा आता है, कभी कभी फोकल सीजर रहता है. फोकल यानी ट्यूमर आपके चेहरे पे ही दौरा जैसे मूवमेंट होंगे, है ना, फ्लिकरिंग मूवमेंट, तो इसको हम फोकल सीजर कहते हैं. कभी सिर्फ हाथ के एक हिस्से में ही दौरा आ रहा है, तो ये भी एक साइन रह सकता है. अगर फोकल सीजर्स हैं तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसको.
2: और एक श्रोता है फोन पे. हेलो.
3: हेलो मैडम.
2: हाँ नमस्कार. आपला
3: रविंद्र बोलतो. मॅडम साहेबांना क्वेश्चन विचारायचा होता.
2: हाँ, विचारा.
3: माझ्या आईला म्हणजे असं सकाळी उठले की डोकं दुखत राहत आणि मायग्रेनची गोळी खाली का ते पूर्णपणे बसून जातात, हे ट्यूमरचे लक्षण असू शकतात का?
1: ज्यादातर आप इस केसेस में हम बोलेंगे कि जैसे माइग्रेन का इन्होंने बताया कि सर दर्द होता है, मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये ट्यूमर का सर दर्द नहीं होना चाहिए. लेकिन ओल्ड एज में है, अगर परसिस्टेंट बना हुआ है, तो एक अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलके एक स्कैन करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा.
2: डॉक्टर, हम इन फोन से पहले बात कर रहे थे कि निदान कैसे होता है और उसका उपचार कैसे होता है.
1: जी जी, तो हमारा डायग्नोसिस जो होता है वो उसके लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं. तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये रेडियोलॉजिकल एमआरआई पे समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार का ट्यूमर हो सकता.
2: अच्छा,
1: है यानी ये प्राइमरी ट्यूमर है, सेकेंडरी है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है. लेकिन जो फाइनल जो डायग्नोसिस होता है वो जब हम ट्यूमर ऑपरेशन करके, अगर ज़रूरत है उसको जब ट्यूमर निकालते हैं, तो उस पर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है. तो अगर डायग्नोसिस हो गया कि ये ट्यूमर है, तो उसका ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ट्यूमर बहुत ही कम ऐसे ट्यूमर है जो जिसको आप ये कहेंगे कि मेडिसिन से उनका उपचार हो सकता है. जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर है जिस प्रोलैक्टिनोमा, तो उसमें, लेकिन ज़्यादातर जो ट्यूमर है उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत, ऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी,
2: यानी सर्जरी करनी जरूरत होती है. तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या इसमें भी है क्या?
1: बिल्कुल, देखिए अभी पहले जो सर्जरीज थी और आज की सर्जरीज में जैसे बाकी इसमें आया, तो इसमें भी एडवांसमेंट है. आजकल जो भी ट्यूमर की सर्जरी होती है वो माइक्रोस्कोपिक दूरबीन में हम लोग करते हैं. न्यूरो नेविगेशन गाइडेड, प्रॉपर किस जगह पे ट्यूमर है, कितना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का उससे नज़दीकी है, कितना हमें ट्यूमर निकालना है सेफली, ये सारी चीज़ें हमको इससे गाइड होती है. तो हम अभी जो ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, तो ये मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन, यानी मैक्सिमम सेफ कितना आप ट्यूमर निकाल सकते हैं ताकि पेशेंट को उसके जो साइड इफेक्ट्स ना हो या कम से कम हो. नॉन कैंसरस अगर ट्यूमर है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी हद तक ट्यूमर निकाल लेते हैं. कभी कभी हम तकरीबन पूरा ही ट्यूमर निकाल लेते.
2: अच्छा.
1: हैं तो अगर वो ट्यूमर निकल गया है तो वो उसकी लाइफ या एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही रह सकती है.
2: अच्छा.
1: और कैंसरस अगर ट्यूमर है तो उसमें भी हम मैक्सिमम ट्यूमर निकालते हैं. अगर डायग्नोसिस पे उसका ग्रेड कौन सा आ रहा है, कौन सी स्टेज में है, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देना है क्या. तो हाई ग्रेड जो ट्यूमर रहते हैं उसमें यूजुअली ये चीज़ें लगती हैं. उसमें पेशेंट में जो सर्वाइवल है, इवन इन कैंसरस ट्यूमर जो अगर, तो उसमें भी काफ़ी बेहतर है.
2: अच्छा.
1: अभी पहले के मुकाबले में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर हो गई.
2: अच्छा डॉक्टर, ऐसे मीथ है कि ब्रेन ट्यूमर का अगर ऑपरेशन हो गया तो एक आध जो पार्ट है उस पर असर होता है, तो ये कितपत, यानी वो ये है?
1: नहीं देखिए, आप अगर ब्रेन पे आप ऑपरेशन करते हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर तो रहते हैं आप, लेकिन सर्जरी की वजह से ऐसा हो जाएगा तो क्योंकि ट्यूमर ऑलरेडी वहाँ पे है, वो ट्यूमर की वजह से ही सिम्टम्स आपको आ रहे हैं. अगर ब्रेन का वो पार्ट जो आपका हाथ पैर का मूवमेंट कंट्रोल करता है, अगर उसके पास होगा तो आपको वैसे ही पैरालिसिस आ जाएगा. ठीक है, अभी नहीं है तो धीरे धीरे थोड़ा सी देर में वो आपको आना ही है. जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को ये समझाते हैं कि भाई देखिए ये चांसेस रह सकते हैं कि आपको वीकनेस आ सकता है, एक 5-10% चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि आप ब्रेन का सर्जरी कर रहे हैं और उस

0: ही कर रहे हैं, तो वो चांसेस जरूर रहते हैं, लेकिन इस डर की वजह से आपको ऑपरेशन नहीं अवॉइड करना चाहिए।
1: अच्छा, यानी ऑपरेशन के बाद ऐसे हो सकता है, लेकिन उस ऑपरेशन करना तो जरूरी है।
0: ऑपरेशन करना जरूरी है, अगर किसी पेशेंट को ऐसा होता भी है तो वो उसके इम्प्रूव होने की संभावनाएं भी रहती हैं बाद में।
1: अच्छा डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमारे श्रोताओं को ऐसे क्या लक्षण है कि जो यानी इग्नोर नहीं करने चाहिए, ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में बताइए।
0: जी जी, तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आपको अगर कंटिन्यूस परसिस्टेंट हेडेक बना हुआ है या न्यू ऑनसेट हेडेक है, दूसरा आपको उसी साथ में अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो रहा है और उसके साथ में नौशिया या उल्टी वगैरह आती हैं, दौरा अगर किसी को आया हुआ है, न्यू ऑनसेट दौरा है, हाथ पैर में कमजोरी अगर किसी ने नोटिस की है, बोलने में अगर दिक्कत आ रही है, सुनाई देने में एक कान में अगर दिक्कत आ रही है, या दिखाई देने में दिक्कत है, डबल दिख रहा है, बैलेंस में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत है, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं किसी के, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो बहुत एजिटेटेड होगा, मेमोरी लॉस हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो ये आप को समझिए कि इसको अर्ली वार्निंग साइन समझिए और इनको आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से डिस्कस करें। इग्नोर नहीं करना चाहिए इनको और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर, आपने आज ब्रेन ट्यूमर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसलिए हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। तो श्रोते हो, हावता मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मानकापुर चौक, कोराडी रोड, नागपुर। हेलो डॉक्टर, हा लाइव फोन इन कार्यक्रम। तज्ञ होते डॉक्टर हुसेन भाटी। आजच्या कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य लाभलं मानसी रागीट आणि नंदकिशोर पोकळे यांचं। निर्मिती सहाय्यक होते अतुल साखरकर आणि सादरकर्त्या संगीता रसपुरे। आता मी भावना लोखंडे डॉक्टर हुसेन भाटी यांच्यासह आपला इथेच निरोप घेते, पुन्हा भेटूया नव्या विषयासह, तोपर्यंत नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात हॅलो डॉक्टर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल लाइव फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय होता ब्रेन ट्यूमरची लक्षणे आणि उपचार। आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली तज्ज्ञ डॉक्टर हुसेन भाटी यांनी। आकाशवाणी नागपूर का ये विविध भारती केंद्र है, एफ एम बँड 100.6 MHz पर। 10:30 हुए हैं प्रस्तुत है मिश्र गीतों का कार्यक्रम मिश्र संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए जसविंदर माने का गाया किरण मिश्रा का गीत। संगीत अबीर मुखर्जी का है।

0: घी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है
1: तो ऐसा बोलो ना
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान ये हुई ना बात
2: क्यों छोटे साहब वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत। इस गीत को सुरों से सजाया था निखिल विनय ने। आइए अब सुनिए अनुषा रंधावा का गाया गीत। गीत और संगीत उन्हीं का ही है।

आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है एफएम बैंड 14.9 MHz पर। दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुमालती। मधुमालती कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को विद्या राउत का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए देशभक्ति गीत कर्मा फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं।

श्रोताओं, आज 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और नेत्रहीनों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में सुनिए हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत। महबूब के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है इस्माइल दरबार ने। इस गीत को गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

श्रोताओ, आज हम बात करेंगे अपने मन के बारे में। मन एक चंचल और भावनाओं का घर है। मन अक्सर भविष्य की चिंता में भटकता है या अतीत के पछतावे में। ये मन ही है एक पल यहाँ एक पल वहाँ, बड़ा ही चंचल होता है ये मन। तो आइए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। संगीतकार है रोशन, फिल्म का नाम है चित्रलेखा।

अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। मन के समंदर में उठती है लहरें, कहीं कभी शांत कभी उथल पुथल सी मची, इन लहरों को थामना तो मुश्किल है, बस इन्हें सही दिशा देना ही जिंदगी है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए मन फिल्म का गीत। समीर के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है संजीव दर्शन ने।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुमालती, आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से एफएम बैंड 100.6 MHz पर। एक निवेदन सुनिए नीलावर सारीज, हेलो सुनहरे नगमे। श्रोताओं, कृपया ध्यान दें, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फ़ोन कर सकते हैं 12:00 से 12:45 के दरमियान, और कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 2560101 और 2529266। तो हमें फ़ोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12:00 से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। श्रोताओं, आप अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहते हो तो सबसे पहला मंत्र है, उसने जो तय किया है उसे स्वीकार करो। शांत मन ही हमारे सवालों के सही जवाब देता है। तो आइए सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया उत्सव फिल्म का गीत।

श्रोताओ, एक कहावत है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, जो मन से हार न माने वही रचता है रीत। अगर मन शांत हो तो हर मुश्किल राह भी आसान लगने लगती है। अभिमान फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल मजरूह हस सुल्तानपुरी के है। इस गीत को संगीत से सवारा है SD बर्मन ने।

0: झाली सोय.
1: कशाची?
0: पिंकीच्या फीची.
1: बघू 20,000 कर्ज लगेच. कोण देत आहे, व्याज किती आहे माहितीये? नियमन केलेल्या संस्थांकडूनच कर्ज घ्या, कर्ज तितकं जितकी गरज, तेही तपासून. झाली सोय, पगार ऍडव्हान्स पाठवलाय.
2: आरबीआय म्हणते
1: आर्थिक वागणे योग्य असेल तर ते तुम्हाला वाचवेल.
3: श्रोताओ, एक नीलावार सारीज हेलो सुनारे रग में निवेदन सुनिए. श्रोताओ, कृपया ध्यान दें, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फ़ोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान. और कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे. हमारे फ़ोन नंबर से 6940067 2560101 और 2529

9:56 तो हमें फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। श्रोताओं, सकारात्मक मन ही रोशनी अंधेरे को भी मिटा देती है। जो रखते हैं विश्वास दिल में, हर मंजिल उनकी हो जाती है। सच्चा मन और मजबूत दिमाग हमेशा मंजिल पर पहुंचने में सहायक होता है। महबूबा फिल्म का गीत सुनिए, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के लिखे। इस गीत को सुरों में ढाला है आर डी बर्मन ने।

और मौन बहुत कम लोगों को समझ जाता है। मन किसकी है मानता, मन पर किसका जोर, मन है चंचल बावरा, बांधना इससे डोर। मुकेश की आवाज में सुनिए संगम फिल्म का गीत, बोल शैलेंद्र के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुमालती, आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। एक निवेदन सुनिए नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। श्रोताओं, कृपया ध्यान दें, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान, और कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फोन नंबर से 6940067256010 और 2529266। तो हमें फोन करना न भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। श्रोताओं, उलझनों में फंसा है मन का हर एक धागा, सुकून की तलाश में जाने में कहां कहां भागा। शोर बहुत है दुनिया में पर मन में एक खामोशी है, तुझसे जो जुड़ी है बस वही एक सच्ची कहानी है। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में वर्मा मलिक का लिखा गीत। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है नागिन।

श्रोताओं, परिस्थितियों में मन को कभी कमजोर ना होने दे, आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुर्बानी फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है इंदिवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: 12 बजे सुनिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे कुछ ही पलों में।
1: आपने ट्यून किया हुआ है विविध भारती और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के

प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने। देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर. मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत.

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गईं। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहां आई किस लिए हैं, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो, तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है, तो चलोगी ना? मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत है उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाजें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए कुछ जो टिप्पणियां आई है हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां करते ही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबा पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहां आंखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियां हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज़ है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्स।

प्राणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी जरूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है। पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है, यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है। इन पलों को जाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार इकरार तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए जरूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: तुमसे
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बना,
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: वो जब भी आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: आइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा

0: squid-eye.
1: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए,
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए ना।

एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो। जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल

0: शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो मेरी तो

धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

0: और क्या।
1: और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हमसे आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है, जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है, बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है, उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: कौन मैं?
1: हाँ तुम,
0: बस तुम।
1: ओफो।
2: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है. आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाएं आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता. तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा. नमस्कार.

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

इस धरती पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझे, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए, आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: है काबू। हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी, उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है।
0: हाँ।
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल।
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है,
0: है ना? हाँ।
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है?
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के, हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके, मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ, ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं।
0: सुनते हैं कि

0: राज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर
1: हाँ
0: कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं, पर वो
1: बिल्कुल
0: बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र है या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने
0: है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ।
0: जी
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक, हाँ जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती हैं तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते।
0: ओहो।
1: तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई
1: हो पाती
0: तो हमें बहुत
1: जी
0: बुरा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है, और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण।

0: तो नेहा, मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं। इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर।

0: है जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।
1: महादान।

सोनाली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने. उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें. मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं. इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे. आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं. और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं

0: उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी, ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सके।
0: सके
1: और जब भी
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और साड़ी
0: साड़ियां
1: में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार, जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है क्या
1: मुझे
0: बात है।
1: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। और कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा। कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां है, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी

0: भाकरी, खिचड़ी, चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम, धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं, सुना लीजिए।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहाकर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे
1: है।
0: करेला भी दीजिए।
1: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसा कहते हैं कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
0: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो
1: चाहिए।
0: घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है ना।
1: हाँ, अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ, वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है,
0: जी
1: सोनाली जी। सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व

0: मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं. उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा. तो ऐसे तत्व मिले होते हैं. इसलिए
1: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता उसमें और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को.
0: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे.
1: बिल्कुल.
0: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं.
1: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे.
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको. तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं. वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा. घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है. छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है. घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं. क्या बात है,
0: बड़ी प्यारी बात लिखी है.
1: और एक साथी लिखती है तो हर घर समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछिए मत. मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत है, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन. अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है. एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं. कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं. क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं.
0: हाँ सच में. एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे. आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे. तो बिल्कुल सही कहा है.
1: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा. जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे. नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले. ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है. एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए. संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है. संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो. जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए. बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए. जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए.
0: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं. मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है. उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है. हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे. एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है. रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं. दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए. उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए. साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए. सोनाली जी अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
1: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे. इस तरह से यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो गृहणिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए.
0: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें.
1: और आप क्या करें,
0: गाना सुन लेते हैं. संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है.
1: तो चलिए गाना सुनते हैं.

कुछ तो बोलो, दिल ना छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोस्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करोगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना।
0: चाहिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है सिंधी साई भाजी।

0: की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है। फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
1: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
0: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले। 5 फोड़न का तड़का दे। बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे। थोड़ा पानी डाल दे और इसमें धीमे आंच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
1: गीत सुने
0: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात कही है. उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें. स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा. और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें.
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है. बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में.
0: हाँ.
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है.
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत. आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही।

0: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
0: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
0: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
0: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
0: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
0: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
0: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी,
0: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी जी जी
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो
1: हाँ।
0: तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब,
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
0: तो, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाई चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है,
1: जी जी
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का, तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा,
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर
1: नहीं
0: से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान
1: जी,
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर दाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की।

0: और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने
1: लिख
0: सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई। बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी, तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी
1: किया।
0: कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूं, तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी। तो
1: क्या
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: ये
0: प्रस्तुति थी।
1: प्रस्तुति से
0: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
0: चलेगी।
1: सोच।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने। हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात
1: जी। तो सृजन को

0: रुकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं प्रताप सोमवंशी उनका नाम है और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
1: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
0: अच्छा।
1: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
0: अच्छा।
1: और शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मेहनतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक उद्योग कर रहे हैं।
1: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
0: जी।
1: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह वाली कविता एक
0: दो लाइन सुनाइए।
1: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे पत्र की भाषा होती थी
0: जी,
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है। उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने

0: चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूं, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का
1: बिल्कुल
0: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया।
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा, और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी
0: यार, जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSC पार्ट 1 में रहा हूँगा तब
1: जी
0: मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है,
1: जी आप अगर सुनाएं हमारे श्रोताओं को
0: हाँ,
1: तो 4 लाइन।
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है,
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है,
1: ओ गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो,
1: वाह
0: अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है,
1: क्या बात है, वाह
0: बहना का
1: शेष कुशल।
0: संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है,
0: आखिरी
1: बहुत।
0: बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं,
1: वाह
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुकंदर सुमन की तरह।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपके गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप,
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग
0: अनकहा
1: नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा
1: तो एक
0: सही।
1: अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो
0: वाह,
1: अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी
1: तो हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो

0: तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर
0: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
1: जी
0: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
1: जी
0: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
0: हाँ
1: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके
0: जी,
1: बारे में बताइए, इसकी
0: देखिए
1: क्या
0: नाटक
1: कहानी है।
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक
0: हाँ
1: थे उस
0: हाँ
1: समय।
0: तो मैं
1: जी
0: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
1: जी
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं, फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था कि
1: अच्छा
0: मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई ये, मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी जी
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो,
1: हाँ बिल्कुल, ये तो
0: इसका
1: जुमला
0: मतलब
1: है।
0: कि दूसरा आदमी
1: हाँ
0: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
1: जी जी
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो, तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है,
1: जी
0: नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही
1: हाँ
0: कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया
1: हाँ
0: और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा,
1: जी
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी,
1: हाँ
0: उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ, इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था,
1: जी
0: और 2 घंटे का शो, और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला, बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था, ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और
1: जी
0: तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे, तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे
1: बड़े
0: उन्होंने
1: कलाकार। जी
0: काम
1: कहाँ पर
0: किया,
1: था, किस हॉल में?
0: वेदा कुंभा थिएटर में
1: अरे वाह,
0: अंधेरी
1: क्या
0: में।
1: बात
0: हाँ
1: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो
0: हाँ
1: तो। ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी,
1: हुआ है
0: नौ
1: ना,
0: भाषाओं में अब तक
1: जिसमें
0: ये
1: मराठी में भी है।
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और
1: तो
0: कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में तो अभी जो

0: अगला प्रस्तुति है एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप
1: तुम घना साया, साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है, ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वा।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए अपने श्रोताओं को।
1: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए।
0: हाँ।
1: पान खाएं सैया हमार।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है।

0: औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे हैं तो वहां भी ढूंढते हैं।
1: जी जी।
0: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हॉन्ट करता है।
1: जी जी।
0: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हॉन्ट करता है या उससे पहले ही।
1: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन
0: बीता। आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
1: जी क्या बात है।
0: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
1: क्या बात है।
0: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
1: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
0: देखिए पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है। एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
1: जी जी।
0: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
1: जी जी।
0: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
0: नहीं,
1: यहाँ सकारात्मक।
0: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी।
0: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए
0: लगाने आए हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
1: सृजन करने आए हैं। जी जी।
0: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया। मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
0: पहली बार देखिए मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद कालिया जी ने मुझे बुला के रखा,
1: इलाहाबाद के
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ। तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा।
1: जी।
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा। फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं,

0: साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
1: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं।
0: जी,
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं, ये आयोजक के उत्सव होते हैं।
0: जी,
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है,
0: जी,
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां।
0: जी,
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
0: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी, वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई,
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: कविता माने कविता नहीं रही,
0: जी, जी।
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है,
0: हाँ।
1: तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे।
0: जी, तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
1: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
0: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता,

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रात आती है तो साथ लाती है ख्वाबों का जहां, साथ लाती है ढेर सारी यादें। यादों में एक अनोखी दुनिया होती है, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें होती हैं यादों में। यादों की चौखट पर बैठ हम बतियाते हैं रात से।

एक रात मुराद पूरी होने की रात, एक मुराद चांद पर पहुंचने की, एक मुराद चांद को देखने की। चांद और रात ये एक दूसरे के हम सफर हैं। एक रात यादों की रात, यादों में मोहब्बत के चिराग जलाए, गम के मध्यम आंच पर जज्बात पिघले, ख्यालों में उनका मुस्कुराना और फिर उदास हो जाना, यादों में सितारों को हथेली पर रोपना और मुस्कुरा देना। इन दिनों दिल इन्हीं में रहता है मसरूफ़।

गम का साया दिल के किसी कोने में पुराने सामान की तरह रखा था, पर उन्होंने एहसास दिलाया कि जिंदगी गमों के टूटे फूटे टुकड़ों से भी सजी होती है। गम के एहसास के बाद खुशी दोगुनी हो जाती है। एकाकीपन के साये में होता है साथ का एहसास। उन्होंने याद दिलाया, जिंदगी मोहब्बत से सजती है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये दिल को क्या हुआ, अपने काबू में न रहा, औचक दिल में बातों का सागर भर गया, औचक आंखें खोई खोई सी रहने लगी, बिना बात होठों पर मुस्कुराहट तिरने लगी, आंखें बिना काजल कजरारी लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाप है जिसने दिल का मौसम बदल दिया।

वक्त के धारे मोड़ दिए उन्होंने, उगते सूरज की लाली ने चेहरे को रंगीन बना दिया और दिल को हसीन। भली सी सूरत, भला सा नाम, दिल की धड़कन बन गए, निगाहों से वे दिल में समा गए। उनके हुस्न का जादू आंखों में तिराया, उन्होंने दिल से करार किया और मासूम दिल उनकी मोहब्बत की गिरफ्त में आ

उनके आने से पौधों में अंकुर फूटे, खिली कलियां मुस्कुरा उठीं, फूलों में ताजगी आ गई, बारिश की बूंदों से सज उठी धरती। उनके आने से आसमान में जैसे किसी ने नीला रंग छिड़क दिया हो। खुशनसीब दिल को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि उसे प्यार है किसी से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

0: तराने नए पुराने।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तराने नए पुराने कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी को सविता सिंह का। शुरुआत कर रहे हैं इस गाने से। फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। तो जन्नत

रूप कुमार राठौर के आवाज में जयदीप साहनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। सलीम सुलेमान की तर्ज थी फिल्म का नाम, रब ने बना दी जोड़ी। अब लीजिए सुनिए रूप कुमार राठौर की आवाज में ही जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीतकार अनु मलिक, फिल्म का नाम बॉर्डर।

बॉर्डर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रूप कुमार राठौर की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे, अन्नू मलिक का संगीत था। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

गीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए आंगन की कली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में आपने समीर का लिखा हुआ गीत आप सुना, अनु मलिक का संगीत था और फिल्म का नाम सोल्जर।
1: विविध भारती से नागपुर केंद्र एफ एम बैंड 100.6 MHz वर थोड़ा वेळात आपण ऐकाल आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित होणाऱ्या हिंदी बातम्या आणि त्यानंतर 6:05 प्रादेशिक मराठी बातम्या। बातम्यांकरिता थोडी प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का सबसे पहले सुनते हैं ये गीत नया दौर फिल्म से। ये देशभक्ति रचना आपको सुनवा रहे हैं।

0: दौर फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे आवाज मोहम्मद रफ़ी की थी। बलवीर की आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और बलवीर की, साहिल लुधियानवी की रचना थी और ओपी नैयर की तर्ज थी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। लीजिए।

सेवा पर। लीजिए अब सुनिए सावन की घटा फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी का लिखा गीत, OP नैयर की तर्ज़।

जयमाला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में सावन की घटा फिल्म का गीत। इसे लिखा था SH बिहारी ने, संगीत से संवारा था OP नैयर ने। दिल ही तो है, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अब आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की। ये बेहद खूबसूरत कव्वाली आपने सुनी, आवाजें थी आशा भोसले और साथियों की, साहिर लुधियानवी ने लिखा था और रोशन ने थर्स बनाई थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
4: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
5: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
6: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए अभिमान फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभिमान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इसका जयमाला कार्यक्रम में आइए लेते हैं बहुत छोटा सा अंतराल।

पाकिजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी। कैफ भोपाली ने इस गीत को लिखा था, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गीत।

लीजिए अब सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गोरा और काला फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग।

राग जय जयवंती पर आधारित सीमा फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की ही आवाज से गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और अब

राग यमन पर आधारित एक गीत आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म से। ये आवाज भी लता मंगेशकर की है, साहिर लुधियानवी की रचना है, संगीत एस टी बर्मन का।

राग यमन पर आधारित बहुत ही सुंदर सी रचना आपने मुनीम जी फिल्म से सुनी, लता मंगेशकर की आवाज में। इसे साहिल उद्यानवी ने लिखा था और एस टी वर्मन ने धुन बनाई थी। राग बिहाग पर आधारित ये रचना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। रचनाकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर टी बर्मन। फिल्म का नाम आपकी कसम।

आपकी कसम फिल्म की रचना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुनी। इस रचना को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था आर टी बर्मन ने। ये रचना राग बिहाग पर आधारित थी। इसी रचना के साथ ही आज का राग अनुराग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अशोक व्यास की लिखी झलकी एक कुंवारा। निर्देशक है अरविंद माथुर।
1: ला ला ला ला ला ला। ओए, माँ बदौलत तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाए और तुम अब तक बैठे हो मुंह लटकाए गंभीर चुप्पी। अच्छा है प्रयास, अरे शादी के बाद की जिंदगी का अभ्यास।
2: ओफो, बंद करो बकवास, मत करो एक दुखी का उपहास। अरे दोस्त, इस तरह की दिल्लगी से अब क्या होना है, नहीं हो रही शादी, कम वक्त इसी बात का रोना है।
1: अबे रोना है तो करता क्यों नहीं शादी?
2: कर लूं।
1: हाँ हाँ कर ले।
2: हाँ हाँ कर ले, अरे पर करूं किससे, तुझसे?
1: भाईजान भाईजान, लड़कों की शादी लड़कियों से होती है।
2: अरे यही तो है संकट।
1: संकट? अरे संकट कैसा? अबे जिस नाजनी पर दिल आए, जिस हसीना को दिल चाहे, वहीं हरी का नाम ले और हाथ उसका थाम ले।
2: हाथ थाम लूं मैं? हाँ? और वो भी लड़की का? अरे अरे ये जानता है तू अच्छी तरह, लड़कियों के सामने मैं नहीं रहता, कहीं गुम हो जाता हूँ, धड़कनों के बहाव में कहीं खो जाता हूँ।
1: अरे अरे ये तो खोने लगा। ओ खोने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे अरे पर ये हाथ में पत्र कैसा, जरा बताना।
2: नहीं, नहीं, नहीं।
1: आहा, आहा, अरे इस पत्र के साथ तुम्हारा शर्माना घबराना, जरा देखे ऐसा क्या है इसमें फसाना।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: वाह वाह वाह, क्या खूब पैगाम है। अरे भेजने वाला सेठ दौलत राम है, शादी गुणवंती के साथ साक्षात कार्य दामाद। मुबारक रमन जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले के इस तोहफे को स्वीकार ले, बाप बेटी दोनों को शीशे में उतार ले।
2: ओहो मजाक ना करो, मजाक ना करो, इतने अहम सवाल से तुम नहीं जानते वो कितने आधुनिक हैं, कैसे रहते हैं, और गुणवंती भी तेज तर्रार है, सब उसको कहनी कहते हैं। इस मॉड शॉट कहनी के सामने मैं जैसे तैसे अपना शरीर तो ढो लूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा सख्त होते होठों को, उसके सामने कैसे बोलूंगा।
1: ओ, तुझको गूंगा होने से बचाना होगा, इसके लिए मुझे कोई चक्कर चलाना होगा।
2: चक्कर? क्या कोई चक्कर चल सकता है? क्या इस समस्या का भी हल निकल सकता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं हो रहा विश्वास, क्या मुझे करना पड़ेगा उपवास?
1: नहीं प्यारे, हमें करनी होगी रिहर्सल, यानी कि पूर्वाभ्यास।
2: रिहर्सल? पूर्वाभ्यास? ये कैसी पहेली?
1: सुन सुन, कुछ देर में यहाँ आने वाली है मेरी सहेली।
2: तेरी सहेली यानी सोनिया? सोनिया और रिहर्सल? नहीं समझ पाया कुछ, होने लगी है बेचैन सी हलचल।
1: ना समझ बालक, बीत गया समय अब तेरे डरने का, हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का।
2: वो कैसे महाराज?
1: वो ऐसे समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल।
2: ये कमरा मेरी ससुराल? ओहो वो ही बुझो तो जाने वाला हाल।
1: तो कम आईक्यू वाले सज्जन, सीधे शब्दों में कहता हूँ समझाकर, इंटरव्यू होगा पहले तेरा यहाँ।

0: हाँ, सोनिया को गुणवंती बनाकर। लगता है आ गई सोनिया। हेलो सोनिया।
1: हेलो संजय।
0: सोनिया, अभी बात हो ही रही थी तुम्हारी, वो देखो मुंह फेरे खड़े हैं मजबूर ब्रह्मचारी। आओ इधर जाने मन। सोनिया, ये है रमन।
1: रमन, ओह, सुना है आप लड़कियों से बहुत कतराते हैं।
0: हाँ, इनकी समस्या ये ही है कि ये घबराते हैं।
1: कीजिए समस्या का खुलासा।
0: एक कुंवारा शादी का प्यासा, एक इंटरव्यू पर टिकी हुई है आशा, लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है इनका तमाशा।
1: तो अब
0: देवी, हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे। तुम बनो गुणवंती और हम सेठ दौलत राम का रूप धरेंगे।
1: ओह, हेलो डैडी।
0: हेलो ज्ञानी बेटे। तो रमन जी, कुछ पल के लिए तशरीफ ले जाइए और वापस इस कमरे को अपना ससुराल मान कर आइए।
2: लेकिन संजय, वो
0: अजी, ये वो को बंद करिए, बाहर जाकर कंघे से संवरिए। ससुराल पहली बार आ रहे हो, अंदर आते समय उतना डरिए।
2: तो मैं चला
0: जाओ, भगवान करेंगे तुम्हारा भला। बड़ा भोला है रमन सोनिया।
1: कौन रमन डैडी, कैसे सोनिया?
0: ओहो, आई एम सॉरी। सुनो, मैं जा रहा हूं अंदर तुम्हारी मम्मी के पास, शादी का इंटरव्यू देने आएंगे कोई रमन व्यास। जैसे चाहो सवालत कर लेना, बात कुछ जमे तो मुझे खबर देना।
1: Come in.
3: मैं आ तो गया हूं धड़कते दिल को संभाले, हेलो भी उनको कहूंगा अगर वो नजर उठा ले। जी
1: आराम कुर्सी पर बैठे, मैं देखती रहूंगी यही पेस किताब का। देखे क्या हाल होता है नेगलेक्टेड खड़े खड़े जनाब का।
3: जी जी सुनिए, जी सुनिए।
1: जी कहिए।
3: जी जी जी मैं हूँ।
1: तो मैंने कब कहा कि आप उल्लू हैं?
3: जी
1: जी
3: जी जी रमन नाम है मेरा, वो शादी की बातचीत के लिए बुलवाया गया हूँ।
1: तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं?
3: जी नहीं, जी हाँ, वो मेरा
1: आप
3: मतलब
1: शादी क्यों करना चाहते हैं?
3: जी वो सब लोग करते हैं, इसलिए मैं भी। वैसे
1: अगर सब लोग शादी नहीं करें तो क्या आप भी नहीं करेंगे?
3: जी नहीं, जी जी जी हाँ, जी जी नहीं, वो मेरा मतलब वो जी जी जी।
1: अच्छा, अपना मतलब फिलहाल भूल जाइए और शादी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल सवाल के जवाब देने को तैयार हो जाइए। तैयार?
3: जी तैयार।
1: तो ये नारी और पुरुष में आप किसको ऊंचा स्थान देते हैं ये बताइए।
3: ऊंचा स्थान? वो हाँ, वो जी कभी कभी नारी को और कभी कभी पुरुष को।
1: अच्छा, ये नारी वाला कभी कभी कब होता है?
3: जी ये जब पुरुष वाला कभी कभी नहीं होता है।
1: ओह, वेरी इंटरेस्टिंग।
3: हाँ जी।
1: तो अच्छा बताइए कि शादी से पहले रोमांस के बारे में आपका क्या ख्याल है?
3: शादी के पहले रोमांस यानी नट की तरह रस्सी पे डांस, दोनों तरफ गिरना ही है। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो वैसे मेरा एक दोस्त है संजय, एक्सपीरियंस्ड है, उससे पूछकर आपको बता दूंगा।
1: अच्छा अच्छा, बताइए आप तलाक के पीछे क्या वजह मानते हैं?
3: जी तलाक, तलाक के पीछे तो बस एक ही वजह होती है।
1: वो क्या?
3: जी वो है शादी।
1: ओह अच्छा अच्छा, आपको खाना बनाना आता है?
3: जी खाना, जी वो आता तो नहीं है, पर आप कहेंगी तो सीख लूंगा।
1: क्या मैं इतनी अच्छी लगने लग गई? अच्छा, मेरी तारीफ में कुछ कहिए।
3: आपकी तारीफ में? मैं जी वो जी आप हैं।
1: बहुत खूब, यानी कि मैं हूँ। लीजिए डैडी भी आ गए। डैडी, मिस्टर रमन कहते हैं कि मैं हूँ।
0: ओहो, पर तुम इनके बारे में क्या कहती है?

0: नॉट बैड, चल सकता है।
1: तो मिस्टर रमन, तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम तो पास कर चुके हो, फाइनल में सिर्फ एक सवाल है। मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, कभी डांट दे या तुम्हारे कान खींच दे, तुमको थप्पड़ वगैरह मार दे, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे?
2: मेरे कान खींच दे, मुझे थप्पड़ मार दे,

0: सुमन टीका खाऊंगा, रिहर्सल ओवर।
1: ओके ओके, समाप्त हुआ पूर्वाभ्यास, अच्छा रहा प्रयास, तुम्हारी सफलता की होने लगी है आस। थैंक यू सोनिया, से 3 चीयर्स फॉर रमन व्यास। देखा देखा, हमारा फोन भी बोलने लगा है अपनी चुप्पी से निकल के, समझकर हमारे यार की खुशी ट्रिन ट्रिन करने लगा है मचल के।
2: अब उठाकर देखो जी, ये क्या समाचार लाया है। जरूर रमन साहब के लिए गुणवंती का बुलावा आया है।
1: क्यों रमन, नाम सुनकर ही शर्मा गया भाई। वाह सोनिया, अब मजा आ गया। हेलो, कौन? ओहो दिनेश, प्रेस रिपोर्टर साहब, आज हमें कैसे याद किया आपने, क्या समाचार है? अबे लड़की भाग गई, 50,000 का इनाम भी, लखपति की बेटी। अब भाई मैं लड़कियां भगाने वाला नहीं हूं, यहां तो खुद एक लड़की आई हुई है मुझे भगाने। हाँ हाँ सोनिया यही है, ले बात कर।
2: हेलो भाई साहब, किसको भगा दिया आपने? क्या सेठ दौलतराम की बेटी गुणवंती?
3: क्या गुणवंती भाग गई? आए, आए, अब मेरा क्या होगा? आए मेरी शादी, गुणवंती भाग गई।
2: अरे अरे अरे, ये तो बेहोश होने लगे।
1: अरे रमन रमन, अरे क्या हुआ तुझे? सोने पानी लाओ। रमन रमन, क्या हुआ तुझे?
2: ये लो पानी।
3: आंखें खुलने लगी हैं, रमन होश में आ रहा है। रमन रख दिया फोन, आए मेरी ट्रेजेडी और तुम्हारी कॉमेडी, चल प्यारे क्वारे, एक नई गुणवंती, एक नया डैडी।
4: एक कुंवारा, अभी आप सुन रहे थे अशोक व्यास की लिखी ये झलकी, निर्देशक थे अरविंद माथुर, ये थी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान की तर्ज थी चित्रलोक। कार्यक्रम विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: सोना महापात्रा की आवाज में भोगरे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार थे राम संपत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
4: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
3: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
4: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
5: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत। आवाजें अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती के नागपुर केंद्र से बैंड 16.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही बोलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश

0: के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की

0: समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है हर फैसले से पहले एक सवाल क्या मैं तैयार हूं अगर जवाब है हां तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी कहा विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत

तो बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से
3: सदा।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था, OP नैयर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में

लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्स बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन ग्रैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान ली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है। जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था, जॉनी का हवाला तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बंबई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साय में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि

0: यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। दो या चार लड़कियां भी थी, सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलेस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशो साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया, आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्र कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।

0: मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी?
1: बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
0: मेरी बेटी कहाँ है?
1: बेटी कौन सा बेटी?
0: उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे।
1: हमें कुछ याद नहीं।
0: याद करो, प्लीज याद करो।
1: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
0: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
1: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ, और तुम मेरे कदमों में।
0: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
1: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा, और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
0: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
1: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
2: गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ, और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई, और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन, यहाँ तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई, और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एसएम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायत ही नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना? छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी

इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते, मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में, मणिमाल के बदले गले में विषधर को

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजर ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चुप है जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी डोला, नहाओ के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद, नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
6: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
2: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाए।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: दीवाना।
1: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे, फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस, तुम्हारा प्यार किसी फिल्म

0: इन्हीं डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हीं ने तो कहा था, बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पनाह देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो

0: रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं विविध भारती के नागपुर केंद्र से एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम बेला के फूल। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बड़े दिलवाला फिल्म के इस नगमे के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोले संगीत दिया है RD बर्मन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बुनियाद फिल्म का गीत। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत पेरलाल ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बेलकफुल विविध भारती के नागपुर केंद्र से एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला नगमा आदमी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में है, शकील बदैनी की रचना, संगीत नौशाद का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में छोटे बाबू फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने। कार्यक्रम का अगला नगमा अजनबी फिल्म